फूल जब मांगते हैं परसों दुआ, तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

वाइज कमाल तर्क से मिलती है यहां मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे।

0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
7: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: रिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। और अगर आप डेप पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और सन्ना रेडियो को सुनना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पर सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों हमारे साथ हम मौजूद हैं हमारे साथी प्रेजेंटर जनाब हुमा खान जी। हुमा खान जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ गुड मॉर्निंग फॉर यू ऑल।
0: आगे भी बोलने ना कुछ कहे ना कि कैसे हैं आप लोग, सुबह का आगाज कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, कोई बोले ना। चलिए आप प्रोग्राम के हिट ऑफ द आवर को शुरू करते हैं दोस्तों और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद सनराइज रेडियो के संग।
2: हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद बेलव्यू रेजिडेंसेस। डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 and even 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127 428 8252।
3: सनराइज रेडियो, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा हिट ऑफ द आवर की शक्ल में गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि इस वक्त 11:17 हो चुके हैं, इसका मतलब है 17 past 11।
0: यस, 17 पास हो गए, 11 शुरू किया, इतना जल्दी 17 गुजर गए, पता भी नहीं चला। दोस्तों शुक्रिया आपका, आप कमर्शियल का टाइम आने वाला है और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा, किसके नाम होगा जनाब? अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आपने तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज किया और सभी दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहा। तो जनाब आपने हमें डेडिकेशन दी एक आंख बंद करके, अब मैंने पूछा कहने लगे एक आंख बंद की हुई है, तो मैंने कहा यार मैं नज़र तो आपको आ नहीं रहा हूँ, ये आंख मुझे क्यों मार रहे हो आप? तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए वो अभी खुल नहीं रही है। तो जनाब हम दुआ करते हैं आप जल्दी सेहतियाब हो जाएँ, आपकी बिनाई जो है वो कायम दायम रहे और आपकी आँख जल्द सेहतियाब हो जाए। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम गीत होगा कमर्शियल के बाद, जो गीत होगा उसके बाद खान भाई आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपके नाम भी गीत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जनाब हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, तो जनाब आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए, तो एंजॉय कीजिएगा गीत को और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलिए कमर्शियल सुनते हैं, उसके बाद गीत को सुनते हैं।
3: नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
6: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste and something new.

खाजा सरगम और विनोद राठौर की आवाजों में। दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और आप चलते हैं अगले गीत की जाने और ये गीत नजर करना चाहेंगे जनाब गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम और उसके बाद मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम जिनमें जनाब इस वक्त काम कर रहे हैं कमाज मनीर वसीम इमरान मुजाहिद अलदिता उमेर बाबर और इफराज आप सब के नाम और साथ में आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे तो एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब हुमा जी, देखो फिर टाइम चेक का टाइम आ गया। पहले शुरू में तो घंटा गुजरता जा रहा है, अब तो टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: इस वक्त स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 11:45 हो गए हैं, इसका मतलब है 11:45, और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं कमर्शियल के साथ।
0: बिल्कुल, कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद जो गाना लगाएंगे लता जी का, और खान भाई आपने फ़ोन किया, आपने इस गाने की बल्कि दो गीतों की फरमाइश की, दूसरा गीत मैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आपके लिए पेश कर सकता हूं। फिलहाल जो पुराना गीत आपने सुनना चाहा नसीब फिल्म से लता जी की आवाज़ में, वो मैं कमर्शियल के बाद आपके नाम करूँगा। आपने फरमाइश की खान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद नदीम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। तो जनाब आपके नाम भी गीत होगा, और हीरा खान साहब, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, अब्दुल कीम साहब राइजिंग हॉल वाले, और ताजुल्फी साहब, गुलाम भाई, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां गलियां घूमी ते पैरां ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: जी दोस्तों, अभी आपने गीत सुना लता जी की प्यारी सी आवाज में, और ये खान भाई की फरमाइश थी। और क्या बात है, इस गाने के दौरान मेरी प्यारी बहना सादिया का फोन आ गया कि वो पाकिस्तान से लौट आई हैं, और जनाब पाकिस्तान से लौट आई हैं और आज काम पे भी आ गई हैं। दो एक दिन फिर रेस्ट की सिर्फ, ओ बहना रेस्ट करना था ना थोड़ा। ओहो चलिए कोई बात नहीं, आप काम पे आ गई हैं। हाजरा बहन बड़ी परेशान थी कि आप जो हैं वो पाकिस्तान में, वो अकेली थी, आपको बहुत मिस कर रही थी। हमने उनका साथ बहुत दिया, उनको हौसला देते रहे, पूछ लें उनसे, हौसला देते रहे रेडियो पे कि सनराइज आपके साथ है, सादिया बहन जल्दी आ जाएंगी, आप जो है फिक्र ना करें। तो बहुत खुशी की बात है प्यारी बहना, खुश आमदीद, वेलकम जी अनु सत बिस्मिल्ला। मेरी प्यारी बहन आई और बड़े दिनों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में नेट हमारे यहाँ बंद थे इसलिए बहन से बात नहीं हो पाई, आज बात हो पाई, बहुत अच्छा लगा।
1: बहन एक और फरमाइश की है, वो भी हम लगाएंगे।
0: ठीक है, वो बाद में लगाएंगे ना, अब खबरें आने वाली हैं। बहरहाल अब ये करते हैं कि ये गाना जल्दी लगा देते हैं।
1: ठीक है।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें।
1: जी आमिर साहब, आज मौसम ब्रैडफोर्ड का बहुत अच्छा है।
0: हाँ, वो तो है।
1: आप मौसम के हिसाब से आज गाने लगाना प्लीज, रोने धोने वाले नहीं लगा देना।
0: लेकिन मैंने रोने धोने वाले तो लगाता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या है कि खान भाई ने हमें फरमाइश की हुई है। अच्छा। आप ही तो याद दिला रही थी मुझे खबरों से
1: जी,
0: पहले
1: जी, जी, जी,
0: कि उनका गाना एक बजता है पीछे।
1: हाँ, वो एक लगा ले, उसके बाद हम
0: के और रोने वाला ही है। ठीक है, तो चलते हैं जनाब, हिट ऑफ द आवर का गीत खान साहब आपकी फरमाइश पे करते हैं और इस गीत को नजर साथ में करना चाहेंगे अपनी प्यारी बहना सादिया जी और हाजरा जी आपके नाम भी और साइमा जी आपके नाम भी और दीगर जो दोस्त हैं इस वक्त, गुलाम भाई हो गए उनके स्टाफ के नाम, अबद भाई हो गए उनके स्टाफ के नाम और जनाब मलिक इम्तियाज साहब की पूरी टीम के नाम। तो चलते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है श्रिया घोषाल और उदय नारायण की आवाज़ों में खान भाई ने इस गीत की फरमाइश की, तो आप सभी सुनने वालों के नाम।
2: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, क्या गीत था और आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। श्रीया घोषाल और उदन नारायण की आवाज़ों में और इस गीत की फरमाइश की थी हमें जनाब खान साहब आपने। तो जनाब अब
1: स्टूडियो की घड़ी में 12:12 हो रहे हैं, इसका मतलब है 12:12 एंड हम इसके बाद गानों की तरफ ही से जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल जनाब, मैं अब क्या है कि अब जो गीत हम प्ले करने जा रहे हैं वो आज साहिल की बर्थडे है। जनाब रॉकी बेना, आपने कहा कि आपके साहबजादे साहिल की आज बर्थडे है, 18 साल के हो गए हैं। माशाल्लाह साहिल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपनी सालगिरह की, और आपको ढेर सारी दुआओं के साथ आपकी अम्मी और आपकी बहन वरीसा और आपके भाई यासर आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम है, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो साहिल बेटा आपके नाम होगा, आपकी जानिब से, आपकी मम्मी की जानिब से और आपकी बहन वरीसा और भाई यासर की तरफ से आपके लिए गीत होगा। तो एक बार फिर आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलते हैं अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, तो चलिए कमर्शियल सुनते हैं, उसके बाद गीत।

0: जी साहिल, आपकी बर्थडे है, आपको आपकी मम्मी रुकी और आपके भाई यासर और आपकी बहन वरीसा आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही थी। आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे जी। आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी साहिल, साहिल आपको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा, बहुत शुक्रिया। और एक और साहिल हैं जनाब, बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। साहिल आप आए और आप मसरत के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो आपके नाम करेंगे और उसके बाद बलवीर सिंह जी लीड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे। और क्यों हमारी प्यारी बहना सादिया जी पाकिस्तान से वापस आई हैं, आज काम पर भी आई हैं, उनका एक फेवरेट कवाली उनके नाम करता हूँ और जो है वो आजरा जी के नाम भी करेंगे। तो बहना आपकी फेवरेट कवाली आपके नाम और इसी कवाली को पसंद करती हैं इकरा जी और वो अपनी सब सहेलियों के लिए जो काम कर रही हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा, उनके नाम भी और सभी सुनने वालों के नाम।
1: जी

बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी उस्ताद जोजी अली खान और साथियों की आवाज़ों में, और इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम हुआ चाहता है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं दोस्तों कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। उदर नारायण और अलका यग्निक की आवाजों में। और मजे की बात यह है कि मीरपुर से तबस्सम शहजाद साहब आप भी सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आने वाला गीत आपके नाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा, और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करूंगा जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। स्पेशली जनाब इस वक्त दो शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली और सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त हैं वहाँ बैठे हुए उनके नाम भी करेंगे। और जनाब मज़े कर रहे हैं पाकिस्तान गए हुए हैं, तीसरा शहजादा जो है आरिफ अली, और वो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वापस ही आएंगे हमारे पास, देखा जाएगा तो हिसाब ले लेंगे उनसे। तो जनाब चलते हैं, ये गीत सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, स्पेशली मीरपुर में इस वक्त सुन रहे हैं जनाब तबस्सम शहजाद साहब, आपके नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अब इसके साथ ही वक्त हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। हुमा जी, आप फिर बहुत बातें करती हैं आप। जब ऑन एयर की बात होती है तो क्या होता है?
1: फिर क्यों होता है कि मैं कहती हूँ आप बात कर ले, फिर मैं करूँ।
0: तो जो प्रेजेंटर बनता है ना बंदा, तो दूसरे को इतना मौका नहीं देता, वो खुद ज्यादा बोलता है
1: और ज्यादा उस्ताद और शागिर्द की बात आ गई है ना, इसलिए मैं खामोश हूं।
0: अच्छा, मतलब मैं इतनी रिस्पेक्ट कर रही हूं। चलिए, जीती रहो जीती रहो। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी, हमारी स्टूडियो की घड़ियां इस वक्त बता रही हैं 12:46 हो रहे हैं, इसका मतलब है 46 past 12।
0: जी तो दोस्तों, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद सदा बाहर पुराना गीत, और वो गीत किसकी नजर होगा? खान भाई, आपने फिर फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपने कहा कि आपके साथी जो इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं सभी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है जनाब। तो कमर्शियल के बाद जो अब सदा बाहर पुराना गीत होगा, वो भी आपके नाम और आपके साथियों के नाम होगा। लियाकत भाई, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम भी करेंगे ये गीत, और उसके बाद साहिल भाई आपके नाम भी करेंगे, और जनाब वाजिद भाई अड्रसवीर से आपने भी फ़ोन किया था, आपके नाम भी करेंगे, और दिनेश भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, आप भी सुन रहे हैं और आपके नाम भी करेंगे, और उसके बाद नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं उनके नाम भी, अब्दुल कयूम साहब राइजिंग हॉल से उनके नाम भी, हीरा खान और जनाब तारिक जुल्फी साहब उनके नाम भी करेंगे। जरीना साहब आप फिर फ़ोन कर रही हैं, आपके लिए ज़रूर गीत प्ले करेंगे, डोंट वरी, आप परेशानी मत कीजिएगा कि आपका नाम अभी तक नहीं लिया, आपने काफ़ी देर से फ़ोन किया हुआ है, लेकिन ज़रूर आपके लिए गीत प्ले करेंगे, तो आप सुनते रहिएगा। तो अब चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जो कई बार मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं, और आज मन कर रहा है कि वो गीत फिर आज सुना जाए मोहिंदर कपूर की आवाज़ में। तो गुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम और सभी दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
9: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
8: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
9: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
10: Official media partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने मोहिंदर कपूर की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना और अब हमें चाहिए 3 मिनट्स का गाना, और 3 मिनट्स का गाना ये गुरदास मान की आवाज में सभी दोस्तों के नाम।

जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों अब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं जनाब। अब टाइम इतना तेज़ी के साथ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही दो घंटे कैसे गुजर गए। जैसे खान भाई कह रहे थे कि ये आमिर भाई आप जब आते हो तो समझ नहीं आती तीन घंटों का ये सफ़र कैसे गुजर जाता है, तो दिल करता है आप पूरा दिन बैठो। तो वाकई दिल तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन हमें तो हुमा जी आपने टाइम पे टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है, तो मन तो हमारा भी नहीं करता होता कि हम जो है वो प्रोग्राम ख़त्म करें, खुदा हाफिज़ करके जाएं। जब असी भी रज जावा ना तो फिर जाके जावा प्रोग्राम छड़ के ना, हुण तुहाडी समझ विच

0: आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैंने कहा कहा के समझ गई?
1: नहीं
0: नहीं समझी ना, चलिए अच्छी बात है। तो जी
1: ठीक है अमित भाई, आमिर साहब ये प्रोग्राम का आखिरी आवर है और इसे हम धमाल के साथ शुरू करेंगे।
0: धमाल के साथ
1: जी,
0: इसका मतलब ये है, आप मुझे वो कह रही थी कि आप थोड़े मौसम के लिहाज से गाने लगाना, रोने वाले ना लगाना, तो आप मतलब है मैं स्लो, लेकिन मैंने स्लो ही लगाने हैं, बाद में धमाल लगा दूंगा।
1: हाँ ठीक,
0: लेकिन उसके बाद मैंने नाचने वाले गाने नहीं लगाने, तेज तेज नहीं लगाने। वैसे तो मेरे गाने तेज होते हैं, क्योंकि अगर तेज गाने ना हो गुलाम भाई शोर करना शुरू हो जाते हैं, मेरा स्टाफ लेजी हो गया है, आप काम नहीं कर रहा है, आप सोने वाले गाने लगा रहे हो, तो यार कोई तेज गाने लगाओ, ये करो वो करो, तो फिर वो और दूसरे काफी दोस्त जो इस वक्त फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं,
1: इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़े धमाल करते हैं।
0: हाँ तो फिर बाद में स्लो हो जाएगा मसला। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल चलो धमाल ही चला देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हुमा जी कह रही हैं तो धमाल से शुरू करते हैं। और गुलाम भाई का फोन आ गया जनाब। गुलाम भाई फोन रख दे, अभी हम बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सुन रहे हैं, मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं शिकायत नहीं करता हूँ, मुझे पता है पहले पहले काफ़ी अरसे की बात है गुलाम भाई, जब मैं प्रोग्राम शुरू करता था तो थोड़े स्लो होते थे, तो आप बोलते थे यार क्या बात है आज स्लो, आपको याद नहीं रही शायद, याद होगी, लेकिन उसके बाद मैंने मौका दिया ही नहीं आपको बोलने का, मैं तो मस्ती भरे गीत और सारे तेज़ तेज़ गीत लगाता था। तो चलिए एनीवे धमाल सुनते हैं, और धमाल को सब की नजर करते हैं जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
2: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने धमाल सुनी गुरदास मान की प्यारी और सुरीली आवाज में। होमा जी, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो आप भी कोई बताइए, आपकी पसंद का कोई और गीत है?
1: मेरी पसंद के दो तीन गीत मैंने आपको बताए।
0: अरे गंदा ही नहीं, वो मैं प्ले नहीं करने वाला, वो मैं सबको बोर नहीं करने वाला। उधर से आप कह रही हैं कि तेज तेज गाने लगाओ, उधर से आप स्लो गाने की फरमाइश कर रही हैं, ये क्या? कोई बात नहीं, फिर मैं अपना काम ही चलाऊंगा। और अब जो गाना है ये, क्योंकि टाइम चेक कर देते हैं पहले।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी, हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि इस वक्त 1:16 हो रहे हैं, 16:01।
0: जी, और 16 मिनट्स पास हो गए जनाब हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा साथ कम हो गया है इस घंटे से। तो अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद, और मैं भूल गया, रीटा बेटिया आप अमेरिका में इस वक्त सुन रही हैं, और आप कह रही थी जब ये धमाल लगी तो आप सब जो है घर के अफराद साथ में डांस करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छा लगा आपने ये अगर धमाल इंजॉय की है। तो आने वाला गीत रीटा बेटिया आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ आपकी अम्मी के नाम भी करेंगे। और असल में ये गाना जो प्ले करने जा रहा हूँ, ये मीरपुर में इस वक्त हमें तबस्सम शहजाद साहब सुन रहे हैं, उन्होंने फरमाइश की है, और वो जनाब आसिम साहब ओल्डम में होते हैं, उनकी नज़र करना चाहते हैं। तो कमर्शियल के बाद गीत होगा उनकी पसंद का, और प्यारी बहना सादिया जी, हाजरा जी, आपके नाम भी होगा। और गुलाम भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप लेस्टर गए हुए थे, अभी वापस आए और रेडियो को सुनना शुरू किया है, तो जनाब आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी होगा, नवीद भाई के नाम भी होगा, और वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और मुना जी आपके नाम भी होगा, तो इंजॉय कीजिएगा। स्पेशली ये गाना फरमाइश की हमें तबस्सम शहजाद साहब, आपने मीरपुर से आसिम भाई के लिए आप सुनना चाहती हैं, तो उनके नाम।
3: नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: जोकर।
1: ये दोस्तों अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से लिया हुआ तबस्सम, शहजाद साहब आपने सुनना चाहा था अपने कज़न जनाब आसिम भाई के लिए जो ओल्डो में होते हैं उनके लिए। तो अब जनाब छोटा सा गीत हमें चाहिए क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है। चौधरी मुजफ्फर साहब आपने भी फ़ोन कर रखा है जनाब, तो आपके नाम भी करेंगे और ग़ुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम और ख़ान भाई आपके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, स्पेशली इस वक्त दो शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं बिशारत अली और सिकंदर अली, तो उनके नाम करेंगे और जिक्र जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कुमार सानू को बहुत ही प्यारे अंदाज में।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और मिस्टर बेचारा फिल्म से लिया हुआ गीत कमार सानू की आवाज़ में आप दोस्तों के लिए पेश किया। और दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गीत होगा। वो होगा जनाब प्यारी बहना सादिया जी, आज काम पे पहले दिन आई हैं आप, पाकिस्तान छुट्टियों में पाकिस्तान गई हुई थी और वापस आई और एक दिन रेस्ट की और सीधी काम पे आ गई। माशाल्लाह आपके हौसले जवान हैं और हौसले बुलंद हैं आपके, और बड़ी हौसले वाली हैं आप। आखिर बहन किसकी हैं? तो जनाब आप के नाम होगा, आजरा जी के नाम होगा, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम होगा, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं। आपने किसी का फ़ोन उठाया या करना है नाम?
1: मैंने अभी फिलहाल तो किसी का फ़ोन नहीं उठाया।
0: चलिए फिर ठीक है, मैं ये ना हो के बाद में झगड़ा हो जाए कि भाई आपने जिन लोगों के फ़ोन उठाए उनके नाम लिए और मुझे नाम ही नहीं लेने दिया किसी का।
1: ऐसा कोई कॉल आई नहीं है।
0: चलिए फिर ठीक है। चौधरी मुजफ्फर साहब सुनिएगा, कमर्शियल के बाद गीत होगा जनाब।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226, Mirdosh Kumar, 07899-055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कोई गाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। तो चलते हैं, सुनते हैं जोहर की अजान। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी सामईन, अभी आपने जहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं अब, क्योंकि टाइम चेक करते हैं और फिर साथ में कमर्शियल का टाइम भी हो गया है और उसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वक्त बड़ा तेज़ी के साथ प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंचने वाला है। तो कोशिश करेंगे कम से कम आपके लिए दो गाने तो ज़रूर हों। तो अब क्या है कि टाइम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
3: जी, हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही है कि 1:47 हुआ,
1: 46 मिनट
3: हुआ जा रहा है,
1: यानी कि 46 मिनट्स पास्ट वन। तो अब आप स्लो हो गए क्योंकि वो गाना स्लो लगा हुआ था, इस वजह से आप मुझे प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था तेज गाने लगाना, तो तेज गाने नहीं, या आप सेट हो गई, आपकी फरमाइशें पूरी नहीं की मैंने।
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
1: अच्छा, शोर है ना, दिल में नहीं लगाया ना कि मेरी फरमाइश क्यों नहीं पूरी की।
3: नहीं नहीं नहीं, कोई
1: सही कह रही है,
3: कोई बात नहीं।
1: पर आप पहले तो जोर से बोल रही थी, आप धीमे लहजे में बोल रही है, इसका मतलब जी। चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों, वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा। गजाला जबीन बेना आपने फ़ोन कर रखा है, थोड़ी देर के बाद आपके लिए ज़रूर गीत प्ले करेंगे। फ़िलहाल जो गीत हम प्ले करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है, आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करूंगा, और ये पाकिस्तानी गीत है तो आप दोस्तों के नाम करूंगा। और तनवीर अख्तर साहब, आपने भी फ़ोन कर रखा है, थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी ज़रूर कोई गीत प्ले करूंगा। और फ़िलहाल जो आने वाला गीत है, गुलाम भाई आपके नाम, वाजिद भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब, खान भाई, लियाकत भाई और साहिल भाई, और उसके साथ साथ दिनेश भाई आपके नाम भी करेंगे, और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे, और अब महबूब इलाही साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया जनाब आपका, साथ में नाम जोड़ते हैं जनाब, आपके नाम भी करेंगे इस गीत को, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस गीत को पसंद करेंगे। और सफीउल्ला भाई आपके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, स्पेशली बाबर शाह पे दो शहजादे बशारत अली सिकंदर अली सुन रहे हैं, उनके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अहमद रुश्दी की प्यारी सी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही दोस्तों हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पसीर हुआ जाता है। और गजाला जबीन बहना, शुक्रिया आपका फोन करने का। आपके नाम गीत महबूब अल्लाह साहब, शुक्रिया आपके नाम। और तनवीर अख्तर साहब आपके नाम और दीगर सभी सुनने वालों के नाम ये गीत करते हैं। और हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहां हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जी उमा जी, जी। आप इजाजत,
1: आज के लिए इजाजत चाहते हैं इंशाल्लाह। कल
0: संडे, संडे नहीं, कल फ्राइडे है, सैटरडे भी नहीं, संडे को
1: जी, संडे को फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।
0: जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी अमर शराद को भी इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाह जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मुलाकात होगी संडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निकबान एंड गुड बाय।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाए गए। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है, रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है, जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
4: Chinda, it's all about rhythm boys. What a boy, bad man. Listen, at the boom tune this. Cheshire Cat said that scene.

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Ladies and gentlemen,
4: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Number one.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
3: You are listening to Sir.

0: Sahil Aziz with Happy Birthday. So happy birthday going out to you, Sahil. Hope you have a lovely day.
1: To you.
0: Celebrating your birthday, your 18th birthday, a special one as well. Okay, so listeners, it is coming up to the ad break. Straight after the ad break, so I have a beautiful Magesh track, which I am going to dedicate to Allah Ditta that called earlier. And he was saying, please dedicate this next track for me because you want to listen to that one specifically. And also, I'm going to dedicate the classic hit of the hour to, let me see, I did get a phone call from Wajid from Huddersfield as well. Lovely to hear from you, Wajid. You were sending a salam out to everybody and you were saying dedicate a nice track for me and for my brother Sajjad as well. So I will actually, you wanted to listen to a Bangra track, but I'm going to dedicate this one for you as well because I know that you like your old classical tracks as well. But first things first, let's have today's riddle. Gee, if you missed the riddle that I started off in the last hour, today's riddle that I have got for you is, the more of me that you take, the more you will have left behind. What am I? The more of me that you take, the more you will have left behind. So what am I? If you can solve that riddle, give me a call on that number, 01274306666. Let's go for the mad breaks and I'll be back with the all-important classic hit of the hour straight after the ad breaks. Let's take a look at the time before we go for the ad breaks though.
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Time according to Sunrise Studios clock now is 47 minutes past 6. That is 6:47.
3: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
4: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजे रोटी और आपकी साख होती है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
5: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
7: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you?

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: म्यूजिक।
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0127473332। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें। तेरी
1: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें